आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे।

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती।

देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 2 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: को डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूँ लेकर आज का स्टार ओल्ड इज गोल्ड का ये बेहतरीन प्रोग्राम, और सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। ये कही अगर थैंक यू किस लिए भाई, तो थैंक यू इसलिए आप इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे गाने भेजते हैं कि दिल खुश हो जाता है। फिर कहिएगा अमन जी आज आपको आने में देर क्यों हुई, तो देर इसलिए हुई कि आज हमारे वो जोध यानी पाली यानी राजस्थान से आए हुए अकबर खान जी वो मुझसे मिलने आए हुए थे, तो बस उन्हीं से मैं भी गया था मुलाकात करने के लिए, और थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, बट कोई बात नहीं मैं आ चुका हूँ। और सबसे पहले मेरे पसंद को एंजॉय कीजिए, और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने और आपके गाने को प्ले करने। एंजॉय द ट्रैक।

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

0: अमन मेरा नाम नहीं है, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और बहुत से दोस्त जुड़े हुए, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले आज कौन से दोस्त हैं जरा दिखता हूँ मैं। सबसे पहले जुड़ने वाली हैं नाहिद अंसारी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बिट्टू कुमार जी हैं और अशोक देशमुख जी हैं और सरफराज पटेल जी यानी सरफू भाई, बहुत बहुत वेलकम है साउथ अफ्रीका से। और अजय कुछ जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अजय कुछ जी आपका भी। और हमारे सर्वजीत सेठी जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी, ओके जी। और हमारे फूलबाग संजू भाव जी भी हैं, इनका भी हम वेलकम करते हैं। और सर्वेश भगत जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। मुबारक हुसैन जी हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आप भी जुड़ गए। और दत्ता करम जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्ता करम जी। और भी बता दूँ कौन कौन से दोस्त हैं दत्ता जी के बाद है। हमारे ये सुनीता गोप जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है सरायकेला झारखंड से। और संतोष गौंड जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और कल आप नहीं थी, ओके, तो यानी कि कल कहाँ थी, मैंने तो मिस किया है। और ये फीडबैक अच्छा, यहाँ पे जुड़ चुके हैं एमडी फैज आलम जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और एमडी नाजिम जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ जाकिर खान जी आपका भी वेलकम करते हैं। और हमारे गजानन सलोकार जी हैं, वेलकम करते हैं आपको भी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है आपका भी। वीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी का वेलकम करते हैं। आज का जो पहला नगमा है वो मैं अशोक देशमुख जी का ग्रुप के नाम है, सुनवाते हैं।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम।
1: आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है।
0: Okay.
1: फिल्म का नाम है शान और गाने का बोल है, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ। और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
2: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है शान और गाने का बोल है, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ। हाउ द स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत अंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, परेश्वर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, सोनी कुमारी, मुन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्मानंद पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी,
0: थैंक यू।
2: आज सब और सपनों का शहजादे जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, आर सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, आर सभी लिसनर्स, सभी को सुना दीजिए। जयराम जी के
0: बिल्कुल। और इसी गाने में शामिल है सैयद यूनुस जी, आत्मानंद पाटिल जी।
3: अस्सलाम वालेकुम आर जे अमन सर जी।
0: वालेकुम सलाम जी।
3: मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज ये स्टार ओल्ड इज गोल्ड, उसी मौके पर एक ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग लेकर आया था सर जी। मैं फिल्म का नाम है शान और गीत के बोले, आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, क्या हाँ नाम अब्दुल है मेरे, सबकी खबर रखता हूँ। ये गीत के बोले सर जी। और इस गीत के साथ जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड, उन सबको ये सॉन्ग डेडिकेट है। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी।
0: और इस गाने में आत्माराम जी भी हैं, तो अभी सभी दोस्तों के पसंद पे एंजॉय द ट्रैक ये गाना
4: याली।

0: है मेरा क्या, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर।
1: बिल्कुल, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ ना। फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे। और यहाँ पे सरोज भगत जी क्या कहते हैं, पहले इनकी सुनते हैं।
2: जय मां सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, थैंक यू सर।
1: वेलकम,
2: हमारा चारों भाई का फरमाइश आप चला दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी के गुरु की फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। दत्ताकरण जी लिखते हैं कि ये ग्रुप का डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आया। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि ग्रुप का डिमांड बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1981 के पैदान नंबर 28 पर शान का ये बेहतरीन नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में सुनकर मजा आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अशोक देशमुख जी को इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
3: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत सुनकर सभी श्रोताओं ने पसंद करके फीडबैक दिए, सभी का हम धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
1: धन्यवाद आपका भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि आपका ओपनिंग गाना और ये ग्रुप डिमांड बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
4: अमन जी गुड इवनिंग, आप उत्तर प्रदेश से नाम अब्दुल हमीरा, मैं सबका नजर रखता हूँ।
1: ये आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, थोड़ा सा जोर से बोला कीजिए प्लीज। ये फिर
5: शुक्रिया अमन सर जी हमारा ग्रुप का फरमाइश बजाने के लिए। मैं आत्माराम पटेल लिहा बुलढाणा महाराष्ट्र से।
1: धन्यवाद आपका भी। और ये भी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
6: थैंक यू आरजे अमन सर जी, हमारा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सैयदीन, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी।
1: और यहाँ पे अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अकबर खान जी। और आज आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई, सच में बहुत अच्छा लगा कि कोई इतना दूर से मुझसे मिलने आया है। ओ माय गॉड, सच में मतलब दिल खुश कर दिया आपने। और यहाँ पे सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं, नाम है सरिता सिन्हा जी, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी संध्या पटेल जी। और फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले कर, और हाँ यहाँ पे अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर फरमाइश, मजा आ गया सुन के। वैसे अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल यादव जी का है, नाम अमिताभ नहीं है, मैं मतलब अमिताभ नहीं हूँ, ये गाना वो सुनना चाहते हैं। सुनवा दिया नंदलाल जी, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: दास्तान। वाह वाह,
1: जियो किशोर कुमार।
2: जियो।
0: अरे नहीं यार, ये तो रजनीकांत है।
3: अच्छा
4: भाई, ये तो अमिताभ बच्चन है।

0: छोटा सा आदमी हूँ अमिताभ नहीं हूँ, छोटा सा आदमी हूँ अमिताभ नहीं हूँ।
1: बिल्कुल अमिताभ नहीं हूँ, अमिताभ नहीं हूँ, अमिताभ नहीं, एक छोटा सा आदमी ही तो हूँ। वैसे यहाँ पे यानी कि प्रशांत अम्बुलकर सर जी जुट चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि मजा आ गया सभी गाने सुनकर। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आया, दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच इसके लिए, उनको थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं नंदलाल जी को। ओके, और ये फिर
2: अमन जी गुड इवनिंग, मैंने पहले सुना सवाल ने सुना है, ये मैं अमिताभ नहीं हूँ, गुड सॉन्ग, अच्छा सभी को बोलेंगे
1: जी। धन्यवाद आपका वीरेंद्र सिंह जी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि झक्कास नगमा है, एकदम मजा ही आगे सुन गए। और कुंता बेन लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी गुरु फरमाइश मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जितेंद्र जी बिरन। और साथ ही साथ हमारे ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: वाह सुपर नगमा, सर्वेश भगत जी का भी और ये भी, छोटा सा आदमी हूँ अमिताभ नहीं हूँ, एकदम जबरदस्त क्लासिक गाना, बहुत आनंद आया। MD फैज आलम मुहिउद्दीन नगर से।
1: ओके, अगला जो यानी नगमा है, अगर उसको अभी मैं प्ले नहीं कर पाया तो समझिए कि फिर वो लास्ट तक भी प्ले नहीं हो पाएगा। और वो गाना है हमारे असलम राणा जी का, इसलिए उनके गाने को मैं अभी प्ले कर रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में जगह नहीं मिल पाएगी। और सच में महंगाई मार गई, इंजॉय कीजिए।
4: कहा किस्मत तेरी एक हमें आंख की लड़ाई मार गई।

0: और गाना बहुत ही लंबा है, 11 मिनट 44 सेकंड का है, इसलिए पूरा गाना प्ले करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसके लिए माफी चाहूंगा। और नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड, वाह मजा आ गया, थैंक यू सो मच असलम राणा जी। और ये क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
1: हेलो आरजे अमन सर, मैं अनिल मेहता सूरत गुजरात से आपके लाइव शो में मैं भी जुड़ गया हूँ, और आज तो ओल्ड इज गोल्ड, इतने अच्छे अच्छे सारे गाने सुनने को मिलेंगे तो हम कैसे मिस करेंगे, इतना अच्छा प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, धन्यवाद कहेंगे। और अभी जो गाना चल रहा है वो भी बहुत ही लाजवाब गाना सुनाया, महंगाई मार गई, सुपर गाने की चॉइस है, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और संतोष गौड़ी लिखते हैं बहुत ही शानदार ये गाना, रोटी कपड़ा और मकान का मजा आगे सुनवाने के लिए धन्यवाद देते हैं दोस्त को। और एमडी फैजी क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं।
2: जी ये भी सुपर गोल्डन हिट नगमा, महंगाई मार गई, सच में दिल्ली से लेके बिहार तक महंगाई महंगाई है।
0: सही बात,
2: बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए, एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर से।
0: बिल्कुल महंगाई मार गई है भाई। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी और असलम, एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं जी, थैंक यू।
0: वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे अमीना खान जी, वाह वाह वाह, ये क्या खूब सॉन्ग है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, सच में ये गाना बहुत ही प्यारा है, भले ही सुनने में लग रहा है लेकिन सच में महंगाई मार गई है, इतनी हर चीजें महंगी हो रही हैं कि क्या ही बताया जाए। और वह जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। और हमारी जुड़ चुकी है नंदनी माँ जी, माँ जी आपको मेरा प्रणाम है, महंगाई मार गई, जी जी बिल्कुल मार गई है माँ जी। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1975 की पैदान, नंबर एक पर बजा था ये गीत लाजवाब, आज का हाल उसी समय बता दिया गया था सर, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सहिता सिन्हा जी लिखते हैं कि बाकी कुछ पता था, लाजवाब गीत सुनाने के लिए सच में धन्यवाद देते हैं असलम राणा जी को। और कुंता बेनी लिखते हैं कि वाह बहुत ही शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच असलम राणा जी। गजानंद जी लिखते हैं कि रोटी कपड़ा मकान का ये लाजवाब गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलम राणा जी को। और प्रशांत अमरकर सर जी लिखते हैं कि बाकी सब बचा तो महंगाई मार गई, सच में बहुत ही बढ़िया गाना है। और ये क्या कहते हैं।
4: हेलो अमन जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आज के गाने भी बहुत बहुत अच्छे।
0: जी जी थैंक यू सो मच, आपका आवाज़ समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है मुझे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपको। लेकिन अगला जो डिमांड है हमारे शाहनवाज खान सर जी, बहुत दिनों बाद वापस यहाँ पे लौट कर आए हुए हैं रेडियो हॉट स्टार पर, उनका स्वागत करते हुए उनके गाने को मैं प्ले करने वाला हूँ। और आज क्या वो लेकर आए हुए हैं जरा सुनते हैं।
5: अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले जितने भी नए लोग रेडियो हॉटस्टार से जुड़े हैं, मैं अमन सर की तरफ से सबका वेलकम करता हूं। मैं शाहनवाज खान हैदराबाद से। अमन सर आज इस प्रोग्राम में मुझे एक गाना सुनना है, गाने का लिंक मैं आपको भेज रहा हूं। ये गाना सबसे पहले हम सबके चहेते हरफन मौला, हर दिल अजीज, सुंदरता की मूरत के आशिक आरजे अमन सर जी आपको डेडिकेट है। इनके बाद इस गाने में शामिल हैं पल्लवी जी ऑस्ट्रेलिया से, इंतेशाब जी लंदन से, शमा जी, पुष्पा चौधरी जी, नंदनी तिवारी जी, आरती वर्मा जी, प्रिया मिश्रा जी, सरिता सिंह जी, पूजा भास्कर जी, पूजा कुमारी जी, काजल जक्कास जी, संगीता अम्बुलकर जी, अरुणा जी, ज्योति खटवटे जी, बबीता जी, शालिनी त्यागी जी, डिंपल वर्मा जी, आरती तिवारी जी, आरजे रुबीना मलिक जी, शिखा मिश्रा जी, आवाज की मल्लिका आरजे रत्ना जी, मनीषा कुलकर्णी जी, आरजे सोनिका और आरजे रजनी जी, असलम राणा जी, सर्वेश भगत जी, अशोक कुमार और अशोक देशमुख जी, आजाद अंसारी जी, नागेश्वर धाकर जी, अजय कुश जी, रामकेश जी, नेत्रपाल जी, गुलबास जी, सतीश शर्मा जी, प्रोग्राम रिपोर्टर संजू भाव जी, मोहम्मद अता जी, अमोल कांबले जी, हिरामन किनारे जी, प्रमोद बगारे जी, प्रमोद कुमार जी, शेखर तेलर जी, मेराजुल हक जी, सैयद यूनुस जी, मिनेश पटेल जी, रवि राणा जी, रवि मोहारे जी, जितेंद्र खरवार जी, दीपक सिंह जी, अंचल कुमार जी, आत्माराम पाटिल जी, संतोष एस काले जी, गजानंद सालोकार जी, दत्ता कदम जी, बाला साहेब सोलंकर जी, सुरेश बिसे पाटिल जी, समाधान कदम जी, उपेंद्र यादव जी, एम डी महमूद आलम जी, पंडित भर जोड़े जी, अनंत कुलकर्णी जी, सरफराज जी, जाकिर मुलानी जी, दशरथ सागुते जी, सोनू जी, धर्मेंद्र वर्मा जी, दिलवा आलम जी, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम साहब, राकेश

इशपान भंडार फैजाबाद वाले, रविंद्र शानू जी, कुबेर मस्के जी, इलियास कुरैशी जी, अयूब हसन जी, इशाक हुसैन जी, शमशाद हुसैन जी, मेराज जी, वेहान जी, यूसुफ हुसैन जी, एमडी फैज आलम जी, एमडी नाजिम जी, दिलशाद जी, फहद और दीन मोहम्मद जी, योगेश जी, रामविलास चौधरी जी, ब्रजेश कुमार जी, सुमित जी, राजकुमार जी, पी एस नहावकर जी और जितने भी लोग हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को अपने इस गाने में शामिल करता हूँ।

0: बिल्कुल रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। गजन अंजलि लिखते हैं कि आदरणीय है अशोक कुमार की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, थैंक यू सो मच शाहनवाज जी। और अशोक कुमार लिखते हैं कि शाहनवाज खान सर जी शुभ संध्या, और आपके पसंद का सुपरहिट गाना सुनने को मुझे मिला, मजा आ गया सुन के, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे डेडिकेट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे दत्तकम जी लिखते हैं कि शाहनवाज खान जी का गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा, थैंक यू सो मच आपका भी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि आज तो सारा हिंदुस्तान इसी गाने की तरह मरा हुआ है, यानी कि महंगाई मार गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आधा हिंदुस्तान तो महंगाई के चपेट में आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा महंगाई हो चुकी है। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, शाहनवाज खान सर जी भाई जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत दिन के बाद नजर आए हैं, धन्यवाद।
0: ओके जी और यहाँ पे अरुण मंडल जी क्या कहते सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, हम भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, हम अरुण मंडल राजकोट से।
0: ओके, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं जी अरुण मंडल जी। साथ ही साथ नाही जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत डिमांड, थैंक यू सो मच शाहनवाज जी आपका। और अर्जय वंशिका जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखती हैं कि वाह क्या गाना है, थैंक यू सभी दोस्तों को आपने डेडिकेट किया। और MD फैज जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, दम लाजवाब, दिल से शुक्रिया जनाब। और कुंता बहन लिखते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच शाहनवाज सर जी, इतना बेहतरीन गीत सुनवाया आपने, मजा आ गया सुन के। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि रहा गर्दिशों में हरदम, मोहम्मद रफी की आवाज में लाजवाब गाना सुनने को मिला, थैंक यू शाहनवाज सर जी। विजय राजे जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और इस सॉन्ग को सुनकर शायद एक शायरी याद आ गई है, लिखते हैं कि जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए। अच्छा, लिखते हैं कि जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके रेडियो हॉट स्टार सुनने के काबिल हुए, न भूलेंगे हम उस हंसी पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह विजय राजे क्या बात है। और एस खानम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है एस खानम जी, और लिखते हैं वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग है जी, बिल्कुल वो तो है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि शाहनवाज सर जी का सॉन्ग बहुत मतलब अच्छा उनके सॉन्ग पे आपने कहा था वो सच में, ओह मैं हमें लगा कि आपने वो महंगाई वाले गाने पे कहा, सॉरी। चलिए तो ओके, तो फिलहाल अगला जो नगमा है वो मैं सुनाना चाहूंगा, भाई सुहेल जी के पसंद है, ऐ सनम तेरे लिए, एंजॉय कीजिए।
3: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने। अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं, आई लव यू।

बिल्कुल ऐ सनम तेरे लिए। और जब वंशिका जी लिखते हैं जी गाना बहुत ही अच्छा लगा है, लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि ये गाना तो सुनने को मिला, मजा ही आ गया। और लाही जी लिखते हैं कि वाह सुपर पसंद के लिए थैंक यू सो मच सोहेल जी। लेकिन अगले गाना जो का डिमांड है हम नाही जी का भी ही प्ले करने वाला है, क्योंकि ये तेरा बीमार मेरा दिल हो।

0: मार मेरा दिल वाला गाने के बाद तो फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं सुपर डुपर सॉन्ग ऑल टाइम फेवरेट है, अच्छा। और गजानंद जी लिखते हैं कि हर कलम अपना करेंगे वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और फैज जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: नाहिद जी की डिमांड एकदम जबरदस्त, ये भी

0: एक डांसिंग सॉन्ग था दिल को झुमाने वाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाही जी इस गाने के लिए। MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर से।
1: थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और शाहनवाज खान सर जी लिखते हैं कि आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गाने को पसंद करने के लिए और अपनी प्यारी प्यारी और कीमती फीडबैक देने के लिए। और खासकर रेडियो हॉटस्टार को स्पेशली थैंक यू शाम को प्ले करने के लिए। अच्छा, शाम को प्ले करने के लिए थैंक यू सो मच सर जी आपका भी। और सर जी आप यहाँ पे बोल कर भी फीडबैक दे सकते हैं, वहाँ पे माइक होगा और माइक में रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि तेरा बीमार मेरा दिल सुपर हिट सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच नाहिद जी। और कुंता जी लिखते हैं कि दोनों डिमांड बहुत ही प्यारे प्यारे लगे, थैंक यू सो मच। एंड हमारी नंदनी माँ लिखती हैं कि आज के सभी गाने बहुत प्यारे हैं। जी माँ जी सुनते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। एंड अशोक कुमार लिखते हैं कि फिल्म चालबाज का ये श्रीदीपी पर फिल्माया हुआ गाना शानदार 1990 के पायदान नंबर यानी कि 25 पर बया था, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये 1989 का है। ओके, अरुण मंडा जी लिखते हैं अमन जी नमस्कार, सभी गाने बहुत मस्त चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नाजिम जी लिखते हैं कि नाहिद जी का गाना औसम लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और एस खानम जी लिखते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, अगला भी गाना सुनिए ये भी ब्यूटीफुल लगेगा आपको। और इस गाने को लेकर आए हुए हैं हमारे किशन पाल साकिया जी, और किशन पाल जी सुनना चाहते हैं कि मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश न कर, बिल्कुल नहीं आजमाऊंगा बिल्कुल।

बिल्कुल मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं और तुम मुझे आजमाने की कोशिश न कर, ये तो मैं भी कह सकता हूँ ना, है कि नहीं? क्योंकि ये आप ही थोड़े कहोगे, मैं भी तो कह सकता हूँ ना, क्योंकि खूबसूरत है तू तो मैं भी कोई कम थोड़े ना हूँ, है कि नहीं? मंगेश दसू जी लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम बहुत शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच। और मीना जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है। मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन जी और सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि प्रोग्राम चकाचक चल रहा है, बिल्कुल आपके मूड की तरह है, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर गजानंद जी लिखते हैं कि किशन पाल जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि लाजवाब गाने के लिए, थैंक यू सो मच। और कुंता बेरी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है और बहुत ही प्यारा डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भाई किशन जी। और नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नगमा है, मजा आ गया सुन के। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर एस खानम जी लिखते हैं कि ये भी सॉन्ग बहुत अच्छा है जी, अगला भी सुनिए वो भी अच्छा ही लगेगा, जिसे लेके आए हुए हम हमारे अरुण मंडल जी। अरुण मंडल जी क्या सुनना चाहते हैं, शायद इनका ऑडियो है, देखते हैं। नहीं इनका शायद कहाँ था, अरुण मंडल जी का, अरुण मंडल जी का कोई बात नहीं, इनका मैसेज था, मैं इनका गाना प्ले कर रहा हूँ अरुण मंडल जी। और ये सुनना चाहते हैं कोई शहरी बाबू, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल कोई शहरी बाबू और लहरी बाबू है अब मुझे पता नहीं है, लेकिन गाना बहुत अच्छा था। विजय राज जी लिखते वाह वाह वाह, क्या सर जी, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गाने प्ले हो रहे हैं कि हम क्या ही बताएं, मजा आ रहा है बहुत। और सर्वजीत सेठी लिखते हैं कि कार्यक्रम तो शानदार चल ही रहा है जी, अगला भी गाना सुनिए वो भी बहुत ही शानदार होने वाला है। शिल्पा बेन लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा ये भी गाना जी बिल्कुल। और अरुण मंदा जी लिखते हैं कि वाह अमन सर जी थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और अशोक कुमार लिखते हैं कि लोफर फिल्म के गाने, दोनों गाने सुनने को मिला, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे सुनील कुमार लिखते हैं कि अमन जी हम भी शामिल हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरुण मंदा जी ने गाने में डेडिकेट किया, उनको धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि अरुण मंडल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं लाजवाब फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच अरुण मंडल जी। और इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और कुंता मेरे लिखते हैं कि कोई शहरी बाबू और सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो आया हुआ है हमारे किस दोस्त का, देखता हूँ मैं। ये डिमांड है यानी कि कुंता बेनी जी का, और कुंता बेनी जी भी जी सुनना चाहती है मेरे मन की गंगा और तेरे मन के जमुना वाला। एंजॉय कीजिए कुंता बेनी जी।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करते हैं सभी फीडबैक को। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं माखन प्रजापति जी, बहुत बहुत वेलकम है माखन प्रजापति जी। और आज राजा मतलब आज ना यानी कि राजा हिंदुस्तानी का गाना नहीं प्ले होगा, क्योंकि आज ओल्ड इज गोल्ड प्ले हो रहा है गाना। अमीना खान जी देखेंगे आज मूड में लग रहे हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल आज तो मैं मूड में ही हूँ, क्योंकि आज तो मतलब मैंने सोच लिया है कि आज मैं पूरा मूड में गाना प्ले करूँगा और इंजॉय करते हुए। और कुंता जी लिखते हैं यहाँ पे, नहीं जी लिखते हैं कुंता जी की पसंद मुझे बहुत ही सुपर हिट पसंद जी बिल्कुल, और मज़ा आ गया है। और लिखते हैं कि यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है जी बिल्कुल, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: ये भी एक सुपर नगमा है, ऑल टाइम हिट सिल्वर चुबली गाना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एमडी फैज आलम।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय कुंता बहन जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और प्रकाश जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: कितनी सदियां बीत गई हैं, हाय तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अमन सर सुपर सॉन्ग है,
0: बिल्कुल सुपर है। और इशाक हुसैन जी लेते हैं कि मिराज आया है, अच्छा मिराज जी आ गए हैं तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिराज जी का भाई। और एस खान जी लेते हैं हाँ नहीं करना चाहिए था जी, लेकिन हाँ तो कह दिया ना, ओके। और वैसे सॉन्ग अच्छा था बिल्कुल। और कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और एमडी यहाँ नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है जी, बिल्कुल ऑसम सॉन्ग था। रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अमीना खान जी का है, और ये रात भीगी भीगी, इंजॉय कीजिए।

एक और यहाँ पे अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, और बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये नगमा था। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आरजे सोनी जी का है और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए आरजे सोनी जी।

0: और आज फिर मुझे नेटवर्क धोखा दे रहा है, बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है और अब आपको ही असुविधा के लिए हमें खेद है। आप लोग प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होइएगा क्योंकि मेरी गलती नहीं, ऑटोमेटिक नेट डिस्टर्ब कर रहा है जी। ओके, और उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और ये क्या कहते हैं भाई, सुनते हैं।
1: मैं माखन प्रजापति बोल रहा हूँ अरोलिया से, हमें राजा हिंदुस्तानी का गाना सुनना है।
0: देखिए सर जी, आज मैं आपको बता दूं कि आज ओल्ड इज गोल्ड चल रहा है 1960 से लेकर 1989 तक, यानी 1962-1989 तक के गाने प्ले होते हैं आज के दिन। तो अगर वो गाने भेजेंगे उसके बीच में तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके गाने के लिए। ओके, एम डी नाजिम जी लिखते हैं लाजवाब ये गाना था, और रंजीत कुमार लिखते हैं सुपर से भी ऊपर पसंद है, थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और अजय कुछ लिखते हैं ये गाना मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आरजे सोनी जी इसी बात पर जो अगला डिमांड है वह एस खानम जी का है, और आज एस खानम जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा नगमा, यानी कि लेडीज वर्जन में, मतलब फीमेल वर्जन में सुनना चाहती हैं वो। और मैं इनके गाने को जरूर सुन, मैं यहाँ पे शामिल करूंगा मेरी भीगी भीगी पल। वाओ, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। सच में गाना बहुत अच्छा था। वैसे मैंने इसे कुछ सुना है, यानी किशोर कुमार की आवाज में, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन इनको हमेशा फीमेल वर्जन ही पसंद है। थैंक यू सो मच एस खानम जी, आपने इतना प्यारा नगमा सुनाया, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी, वाओ, ये लवली फेमस वर्जन में ये गाना एस खानम जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच एस खानम जी। और गजानन जी लिखते हैं कि मेरी भीगे भीगे पलकों से अनामिका वाला का बेहतरीन ये नगमा सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि हम आपसे नाराज हैं, आप मेरा गाना नहीं बजाते हैं। क्यों नाराज है भाई, देखिए गाना बजा आपके लिए, आपको यहाँ पे मैसेज नहीं करना है, आपको मैसेज करना है सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेडियो हॉटस्टार के ऐप में सबसे नीचे दाहिने साइड देखिएगा, मैसेज के बगल में लिखा होगा मोर, MOR मोर लिखा होगा, मोर पर क्लिक कीजिएगा। मोर पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट, वहां से फॉर्म को भर दीजिए, यानी कि अपना नाम वाला जरूर भरिएगा, गाना का बोल वाला जरूर भरिएगा। उसके बाद सब यानी ऑप्शनल है, लेकिन दो तो यानी फील्ड अनिवार्य है, वो जरूर भर कर भेजिए, मैं जरूर आपके गाने को प्ले करने की कोशिश करूंगा। ओके, और नाराज होने की कोई बात नहीं है। मीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत खूबसूरत गाना, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और MD5 जी क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
1: सुपर ओल्ड इज गोल्ड एंड सुपर लवली सॉन्ग के लिए दिल से शुक्रिया MD5 आलम मुहिद्दीन नगर।
0: और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अनिल मेहता जी के है, और वो गाना इस गाने का जवाब है कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो। एस खानम जी ये वो जवाब है, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल तुम रहते हो, तुम रहते हो, तुम रहते हो। और यहाँ पे यानी कि माखन प्रजापति जी रहते हैं कि अच्छा ओके ठीक है, कोशिश करते हैं, उधर भेजिए सॉन्ग रिक्वेस्ट में, तो मैं पहले करूँगा। और कुंता बने लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस, थैंक यू सो मच। और एस खानम जी इतना प्यारा गाना सुनवाया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, और शेखर टेलर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और नाहिद जी ने वाव क्या बात है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। नाजिम जी क्या कहते हैं, एमडी फैज जी
1: जी ये भी लाजवाब गोल्डन हिट, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, इसी बात पर दो लाइन है।
0: कहिए
1: आपकी सादगी में एक खास सा जादू है।
0: अच्छा,
1: आपकी सादगी में एक खास सा जादू है, आपकी मुस्कान हर दिल की, हर दिल को अपना बना लेती है।
0: अच्छा।
1: और आपकी आँखों का सुकून दिल को ठहरने पर मजबूर कर देता
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे एस खानम जी लिखते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप फीमेल है मुझे पता है, तो इसलिए आपको फीमेल वर्जन ही बहुत ही पसंद है। और ये मैं ओहो क्या बात है, और लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा गाना प्ले किया, दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और विलास निकम सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत ही खूबसूरत नगमा कह रहे हैं सुनने का। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है जी बिल्कुल। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है, थैंक यू सो मच। और कुंता बहन लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और रोहित कुमार जी सॉरी रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है, ये गाना सुनकर तो मजा ही आ गया। कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो, सुपर सॉन्ग। और साथ ही साथ साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि लव यू सॉन्ग, ये पल पल दिल के पास। और एस खानम जी लिखते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, बिल्कुल। और एम डी असलम राना जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं भी जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि पल पल दिल के पास रहते, मेरा फेवरेट गानों में से एक है, थैंक यू सो मच इस गाने को सुनवाने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, बंदिश फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं जो मुझे बेहद पसंद है, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। गाना मैं प्ले करूंगा लेकिन इस एड के बाद।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। क्या आपकी आवाज में है वो जादू जो हर दिल को छू जाए? क्या आप बनना चाहते हैं अगला सिंगिंग स्टार? तो इंतजार किस बात का, रेडियो हॉटस्टार लेकर आया है स्टार सिंगर आइडल सीजन 2, एक ऐसा मंच जहां आपके हुनर को मिलेगी नई पहचान और आपके सपनों को मिलेंगी नई पंख। रजिस्ट्रेशन अब ओपन है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, अपनी जानकारी भरें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें, हो सकता है अगला बड़ा सितारा आप ही हो। स्टार सिंगर आइडल सीजन 2, कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटेड बाय आरजे अमन, प्रेजेंटेड बाय रेडियो हॉटस्टार, क्रिएटिव डायरेक्शन आरजे वंशिका, होस्टेड बाय आरजे अमन, स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद महमूद आलम, रियाद सऊदी अरेबिया, पावर्ड बाय रेडियो हॉटस्टार। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना।

बिल्कुल रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, और जितने भी दोस्त आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं स्टार सिंगर आइडल में, अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, तो जरूर रजिस्ट्रेशन करें और पार्टिसिपेट करें स्टार सिंगर आइडल में।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारे। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं, उनकी तो सुनेंगे ही ना सुनेंगे।
1: आरजे अमन सर जी, सरजीत सेट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। हमारी यहाँ पे नंदनी मालिक जी के वाह वाह वाह वाह बहुत ही प्यारा नगमा है। और गजानंद जी लिखते हैं सरबजीत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और शेखर चटर्जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, बिल्कुल वो तो है, मानना पड़ेगा। अरुण मन्ना जी, अमन जी सभी गाने आज के बहुत मस्त मस्त मस्त है। और मीना जी लिखते वाह बहुत खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सरबजीत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आभर दूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के। अमन सर मजा आ गया सांग सुन के।
0: बिल्कुल मजा तो आने ही वाला है, अगला भी गाना में सुनिएगा तो वो भी मजा आने वाला है। इसाक हुसैन जी लिखते हैं कि रंग भरे मौसम से रंग चुरा के बहुत ही लाजवाब गाना, मेरा फेवरेट गानों में से एक है। और कुंता जी लिखते हैं सुपर डिमांड। ओके, अगला जो डिमांड है हमारे बिट्टू कुमार जी का, सभी दोस्तों को डेडिकेट करते हैं। बिट्टू कुमार जी एंजॉय द ट्रैक मुझे ना बुलाया करो।
3: अच्छा

0: वेलकम बैक। और इसी बात पर फीडबैक भी आए हुए, दत्तकांत रीते सरोजी जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। और विजय राजी रीते की बहुत ही बढ़िया शानदार गाना सुनने को मिला आज, तो बहुत ही लाजवाब गाने सुनने को मिल रहे हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रंग भरे मौसम से ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। और अजय कुछ रीते के हिट सॉन्ग है जी, बिल्कुल हिट सॉन्ग तो है। और रवि मार्जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि नाना मुझे बुलाया करो, ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस दोस्त को। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, कितना प्यारा सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और गजानंद जी लिखते हैं कि मुझे ना बुलाया करो, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर काजल झक्का जी का सुनते हैं, क्या कहती हैं काजल झक्का जी।
1: कहाँ जाकर दुआएं करूं, कहाँ जाकर दुआएं करूं कि मिल जाए तू, मैं कौन सी ऐसी मिन्नते करूं, मैं कौन सी ऐसी मिन्नते करूं कि मिल जाए तू। तेरे बगैर सब कुछ खाली खाली सा लगता है, तेरे बगैर सब कुछ खाली खाली सा लगता है, बता मैं ऐसा क्या करूं, बता मैं ऐसा क्या करूं कि मिल जाए मुझे तू। नमस्ते गुड इवनिंग आपको रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग, मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी बिहार से। मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग मैं भेज दे गई हूँ। और ये सॉन्ग मैं सबसे पहले सुना दूंगी मिठू मियाँ जी को, अमन जी आपको, वंशिका जी को, आपकी सुंदरता के मुगल जी को, जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं सभी को सुना दूंगी।
0: ओके जी काजल झक्का जी, लेकिन जो आपने वो शायरी कही ना, बस मैं तो यही कहूँगा कि जहन में तेरी यादों के सिवा कुछ भी नहीं। जहन में मतलब जहन यानी कि मेरी यादों में, लिखते हैं यानी कि यहाँ पे शायर कहता है कि जहन में तेरी यादों के सिवा कुछ भी नहीं, और दिल में गुजरी बातों के सिवा कुछ भी नहीं, और तुम जहाँ भी रहो सदा मुस्कुराते रहो, तुम जहाँ भी रहो और सदा मुस्कुराते रहो, मेरे लब पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। इंजॉय कीजिए और अपना ये प्यारा सा गाना मैं कुमारी अलबेली, इंजॉय द ट्रैक।

बात है, लाजवाब पसंद, मजा आ गया। और इस गाने के बाद तो हमारे गजानन जी का गाना तो आना ही आना है।

0: वेलकम बैक। सच में गाना सुनकर मजा आ गया ना। वैसे मुझे बहुत मजा आया, ये फीडबैक भी सुनिए, अच्छा लगेगा आपको।
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी बिल्कुल, वो सभी को शामिल करती हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर डिमांड काजल झक्का जी का, मजा आ गया सुन के। और साथ ही साथ यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत गाना है, थैंक यू काजल। एंड यहाँ प्रकाश जी लिखते हैं हाय रे पापी ततैया, सुपर सॉन्ग जी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये डिमांड है, थैंक यू काजल जी। और यहाँ कुंता जी लिखती हैं कि बिट्टू कुमार जी और काजल जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों को। गजानंद जी लिखते हैं कि मैं कुमारी आशा भोसले की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बाबू का लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, शामिल करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि काजल जी के पसंद लाजवाब लगी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे MD5 जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: काजल जी की पसंद एकदम झक्कास, ये एकदम मस्त लगा गाना, मजा आ गया, काजल जी को दिल से शुक्रिया। MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर से।
0: इसी बात पर हमारे गजानंद सुलकार जी और संजू भाव जी का मतलब यानी कि ग्रुप फरमाइश शामिल करता हूँ, सुनिए।
3: रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, जी आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार। अमन सर जी कैसन बानी?
0: बहुत ही बढ़िया बानी, कैसन बानी?
3: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोलवड महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है सोमवार और आज की अपनी थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड। आज के कार्यक्रम में सभी ओल्ड इज गोल्ड गीत चलने वाला है सर, तो हमने भी एक ओल्ड इज गोल्ड गीत चुना है सर। फिल्म का नाम है तोहफा और यह फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी। आप हमें इसी फिल्म का एक गीत सुना दीजिए जिसे आवाज़ें दिए हैं किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी उन्होंने। और गीत के बोल सर इस प्रकार है।

0: तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए है कल से कल से। अमन सर जी, जी आप एक गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन में याद करूंगा सर। सबसे पहले आपको
1: थैंक यू,
0: वेलकम अमन सर जी, बाद में आपकी सुंदरता की मुहूर्त, क्योंकि ये सर गीत गा रहे हैं आपकी सुंदरता की मुहूर्त के लिए।
1: तो
0: ये गीत मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा सर।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद सर उनके लिए भी। बाद में चुलबुली आवाज की मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आरजे परमार जी और रेडियो ऑटो स्टार सुन रहा है मेरा पूरा परिवार, सभी को यह गीत मैं डेडिकेट करो सर, प्लीज सुना दीजिए।
1: ओके, एंजॉय कीजिए गोरी तेरे अंग अंग में और ये भरे हुए कल्पी।

0: जी, और इस यानी कि बुधवार से मतलब स्टार यानी मिक्स मस्ती में जो दोस्त मैसेज नहीं कर पाते हैं, जो यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है कि सिर्फ उनके लिए कि आप मुझे लाइव शो में कॉल कर सकते हैं। सिर्फ अब नंबर पे कॉल करना होगा, इन व्हाट्सएप पे नहीं करना होगा, नंबर पे कॉल करना होगा। नंबर है 9135841232 पे, और आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं, जो गाना चाहें वो सुन सकते हैं, हिंदी या भोजपुरी में कोई भी सुन सकते हैं। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और दत्ताजी लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जय मनसर जी, गजानंद सुरोकर जी, भूले भक्त, भूले भक्त संजू भाव जी और पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद आपका भी। और रामकेश जी लिखते हैं कि ग्रुप डिमांड बहुत ही प्यारा था, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त गजानंद सुरकार जी, संजू भाव जी, सभी को थैंक यू सो मच। और ओके, यहाँ पे अमीना जी लिखते हैं कि वाह थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय मनसर जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों का डिमांड को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर्वजीत सेठी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजी सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग, ये तोहफा फिल्म का गोरी तेरे अंग अंग में। जी बिल्कुल, और तोहफा का भी गाना भी बहुत अच्छा है। और शेखर सर जी लिखते हैं कि अमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का गाना प्ले करने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि ऑसम ऑसम ऑसम डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
3: आदरणीय गजानंद सुरकार जी और आदरणीय संजू भाव जी, अपने गाने में शामिल किए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ना ही लिखते हैं कि जो कल से दिल में एक बेनाम सा दर्द है, वो गजल बनकर पन्नों पे बिखरने लगा है। हम छुपाना चाहते थे जिसे सारे जमाने से, वह एहसास बनकर इन लफ्जों में चमकने लगा है। तो हम तो यही कहेंगे आपके लिए कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें उनसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, क्यों है ना। MD5 जी लिखते हैं कि वाह इतना जानदार सा, और गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं, सभी दोस्तों को मजा आ गया। मिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड मेरे पास आया हुआ है, हमारे शाहिद अंसारी जी का, सभी को हमेशा डेडिकेट करते हैं, तो इंजॉय कीजिए शाहिद अंसारी जी।

के हमारे यानी के कल एक बहुत ही खास यहाँ लिस्टनर एम डी फैज आलम जी के साहबजादे एम डी यानी उनका नाम है एम डी जफर जी, उनका कल यानी जन्मदिन है। तो कल उन और कल उन्होंने स्पेशल यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट यानी किया हुआ है, तो 11 बजे से लेकर उनके गाने प्ले होंगे, उनके बर्थडे स्पेशल पे गाने होंगे, तो जरूर सुने और उनके बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर दें। थैंक यू सो मच। और भाई शाहिद अंसारी जी, आपका ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बनते हैं आज के सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, एक और गाना जरूर सुन सकते हैं।

0: वेलकम बैक फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं संजू भाव जी का जन्म गुरु की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नगमा है, ये दिल खुश कर दिया। एमडी फैज लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत गाना सुनवाने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे गीत को पसंद कर रहे दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं। मीना इब्राहिम और अमीना खान जी लिखते हैं कि लिखते हैं सुना है दर्द बांटने से कम होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। लिखते हैं कि सुना है दर्द बांटने से कम होता है, आओ मिलकर दर्द बांटे। आप आवाज में और हम चिल्लाए, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं वाह क्या सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के। और एमडी फैज जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: वाह शाहिद भाई, दिल खुश कर दिया आपने, एकदम जबरदस्त गाना, खूबसूरत और चुलबुली अंदाज वाला ये गाना था। मोगैम्बो खुश हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: ओके, इसी बात पर अजय कोच जी का जो नगमा है वो मैं सुनवाता हूँ। और अजय कोच जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को सभी दोस्तों के साथ।

वेलकम बैक। और यहाँ पे एक एक मिनट के बाद यानी कि वर्षा हो रही है, कभी वर्षा हो रही है कभी फूल रही है, कभी वर्षा हो रही है कभी फूल रही है, मतलब क्या ही बताएं, जबरदस्त वाली बारिश यहाँ पे स्टार्ट है।

0: और प्रमोद कुमार लिखते हैं ऑसम पसंद है भाई आज कोची का, थैंक यू सो मच। और नंदिनी मालिक देखा सुना गाना मुझे लगा बहुत ही प्यारा लगा है। और फूले भक्त संजू भाव क्या कहते हैं सुन लेते हैं इनकी।
1: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी, अमन सर जी मैं फूले भक्त संजू भाव बोधगढ़ महाराष्ट्र से। सबसे पहले आपको दिल से लाखों लाखों धन्यवाद, आपने हमारे ग्रुप फरमाइश को चलाया और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगह दी। थैंक यू सो मच, आपने हमारी फरमाइश चलाई और हमारे गीत के पहले आपने मेरी छोटी और प्यारी से बहन काजल झक्का जी इनकी फरमाइश चलाई, उनके पहले बिट्टू कुमार जी, उनके पहले हमारे मित्र सर्वजीत सेट्टी जी, उनके पहले अनिल मेहता जी, उनके पहले एस खानम जी, उनके पहले आर जे सोनी जी, उनके पहले कुंता बेनी जी, उनके पहले अरुण मंडल जी, उनके पहले किशन पाल शाक्या जी, उनके पहले नाहिद अंसारी जी, उनके पहले सोहेल जी, उनके पहले हमारे हैदराबाद मित्र श्री शाहनवाज खान सर जी, उनके पहले असलम जी, उनके पहले नंदलाल यादव जी और उनके पहले हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हमारे मित्र सैयद इनू जी। इन चारों की आपने मिलजुली फरमाई चलाई सर। और उनके पहले आज के कार्यक्रम का आपका आगाजी गीत अमन सर जी, अब तक चले फरमाइश में सभी गीत सुपर और सुपर से ऊपर रहे और आज का कार्यक्रम जो है स्टार ओल्ड इज गोल्ड यह भी बढ़िया हो रहा है, सुपर हो रहा है, मतलब कि लल्लन टॉप हो रहा है और आप अनोखे अंदाज में प्रस्तुति कर रहे हो सर, आपका स्पेशल धन्यवाद। और आप आज दे रहे सर दुरुस्त आए और मैं यही बोलूँगा रेडियो ऑटो स्टार जो सभी को दीवाना बना दे अमन जी के साथ। मैं फूले भक्त संजू भाऊ धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का हिस्सा है मेरा और तेरी हंसी ही मेरी हर हर किस्सा है मेरा और तू साथ रहे तो मुकम्मल लगे हर सफर और तेरे बिना तो अधूरा सा लम्हा है मेरा। बिल्कुल वैसे अगला और यहाँ पे शाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए और एक और गाना उन्होंने भेज दिया है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द यानी कि प्ले करने के लिए। और यहाँ पे अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी मीना इब्राहिम जी का है, जो डिमांड आया है हमारे यूएस से। तो मीना इब्राहिम जी एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल वो दिल कोई दिल नहीं जिसमें कोई जोश नहीं हो, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अजय कुछ जी का पसंद मुझे शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं लाजवाब गाना है जी बिल्कुल। और दत्ता करण लिखते हैं मीना इब्राहिम जी गाना मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मीना इब्राहिम जी। और मीना जी लिखते हैं मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। और काजल झक्का जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और मैं अपने मिठू मियाँ के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों छुपाते हो, क्यों इनकार करते हो, क्यों छुपाते हो, क्यों इनकार करते हो, आपकी आँखें बताती है, आपकी आँखें बताती है कि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हो। ये मेरे मिठू मियाँ के लिए शायरी था।
0: अच्छा।
1: थैंक यू सर जी आपको भी और दोस्तों को भी। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद है आपका फीडबैक देने। लेकिन वो बोलती है ना छक्का वो अच्छा लगता है, ये इसके लिए थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है आपका फीडबैक। अजय कुछ लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक
2: जी मीना इब्राहिम जी की भी फरमाइश बहुत शानदार मजेदार झक्कास एकदम मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। अकुंता में लिखते हैं कि वाओ ब्यूटीफुल डिमांड, थैंक यू मीना जी। और नहीं जी लिखते हैं ब्यूटीफुल पसंद के लिए मीना जी को बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है मेरे पास वो मैं प्ले करने वाला हूँ। वैसे आज मैं किस किस गाने को प्ले करूँ, किसको किसको नहीं करूँ, फिलहाल अगला जो डिमांड मेरे पास दिख रहा है मैं उसे चलिए अभिषेक तिवारी जी का मैं प्ले करता हूँ। इन कजरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला, एंजॉय कीजिए।

0: ओ माय गॉड, 9:00 अभी तो यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट, 9:08 हो चुके हैं और अब लगता है कि बहुत से दोस्तों के गाने छूटने वाले हैं क्योंकि समय कम है और फीडबैक ज्यादा है, मतलब फरमाइश ज्यादा है।
1: काजल जी का फीडबैक बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ जाता उनकी शायरी सुनने में।
0: जी बिल्कुल, वह शायरी बहुत अच्छा कहती है और नाही जी लिखते हैं कि अभिषेक जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड, मजा आ गया। और ये फीडबैक
2: अमन सर जी, नेटवर्क अपनी औकात दिखा रहा है शायद, क्योंकि पता नहीं चल रहा है सर लाइव कार्यक्रम हो रहा है या फिर एटो मोड पे चल रहा है, क्योंकि सभी गीत ओल्ड इज गोल्ड गीत चल रहे हैं, तो रिपोर्टिंग के लिए सर थोड़ा दिक्कतें आ रही है।
0: जी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या ही बता सकते हैं, मतलब सभी गाने उफ, क्या करें, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और जिनको अगर रेडियो हॉट स्टार पर डिस्टर्बेंस हो रही है वो रेडियो गाना को ट्यून कर सकते हैं, वहाँ पे शायद आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बिल्कुल गजानन जी लिखते हैं कि कजरा मोहब्बत वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ में। बिल्कुल, और कुंता जी लिखते हैं कि कजरा मोहब्बत वाला वेरी नाइस फरमाइश, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और हनंदनी मां लिखते हैं कि झुमका बरेली वाला सुपरहिट गाना, और इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ किन का, जाकिर खान जी का। जाकिर खान जी एंजॉय कीजिए अपने पसंद को।

0: बिल्कुल धड़कते रहेंगे। वैसे का अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का प्ले करने वाला हूँ। और एक्चुअली मैं दोस्तों आप सभी से मैंने कहा था कि 8 बजे तक अपना गाना भेज दीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद बहुत से दोस्तों गाने आते हैं वो मैं चाह कर भी शामिल नहीं कर पाता हूँ, और मुझे भी अफसोस होता है कि आपने भेजा और मैं इसमें शामिल नहीं किया। तो कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ज़रूर करता हूँ। और जितने दोस्तों के गाने शामिल नहीं हो पाते हैं उसके लिए आप लोग प्लीज़ नाराज ना हुआ करें, फिर हमेशा गाने तो प्ले होते रहते हैं आपके। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाकिर जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, शानदार डिमांड। मीना जी लिखते हैं वाह मुझे बहुत पसंद आया ये गाना। और नाहिद जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और अमीना खान लिखती है कि वाह सभी सभी सभी दोस्तों के पसंद बहुत लाजवाब है, थैंक यू सो मच। अजल झक्का जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब गाना, मजा आ गया सुन के। शाहनवाज खान सर जी लिखते हैं कि तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, बेहतरीन गाना, लाजवाब फरमाइश, ओल्ड इज गोल्ड, जिंदाबाद। ये फीडबैक
1: जी, इतना प्यारा और खूबसूरत ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके, इसी बात पर जो अगला जो डिमांड है हमारी सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी आपका मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, और ये गाना तो बहुत ही प्यारा है, मैं पहली बार सुनने वाला हूँ कि तुम सलामत रहो। अब जिसके लिए भी है ये दुआ है,

और यहाँ पे सुनीता गोप जी, आप बनती हैं आज के सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एक और गाना सुन सकती हैं, जल्दी भेज दीजिए, अभी मैं अगला गाना प्ले करूंगा शाहिद अंसारी जी का, जिन्होंने आज के यानी कि विनर बने हुए हैं।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी आए हुए आत्मराम जी, सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: प्यारे अमन खास जी, सप्रेम नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: तुम्हें याद करते हैं, याद करते रहेंगे।
0: ये कहाँ है आप, कहाँ सुन रहे हैं?
1: शुक्रिया सर, आत्माराम पाटिल,
0: धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगभग सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और कुंदा जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस, शानदार पसंद। यहाँ सुनता को मतलब नाम है इनका सुनीता गोप जी का। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई है उनको। जागीर खान लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और दत्ता जी लिखते हैं कि मेरा गाना आज शायद देखते हैं नहीं प्ले हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा। एम डी फाइव जी लिखते हैं कि सुपर वर्ल्ड इस गाना लगा। और इसी बात पर यानी कि प्रमोद जी, आपका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए प्रमोद जी।
2: लिए हमें मौका

बिल्कुल मुबारक हो, मुबारक हो। वैसे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ यहाँ पे शिवम जी की पसंद। और शिवम जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को, और ये मुझे बहुत पसंद है।

0: बिल्कुल, और यहाँ पे कुंता जी लिखती की इन प्रमोद जी के डिमांड जो था ना वो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू प्रमोद जी। और सुनीता गोप जी लिखती अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है और इसलिए आप अपना पसंद का गाना सुना दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और मीना जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन वह क्या खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों के गाने मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा है, ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: वाह शिवम जी की पसंद बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, दिल से शुक्रिया।
0: ओके जी, और इसी बात पर यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि वाव अमेजिंग सुपर पसंद, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाव वाव वाव, मुझे ये गाना बेहद पसंद है जी, मुझे पता है। और गजानंद जी लिखते हैं कि जी हाल मस्ती मकुम बलंजिस, ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है, शब्बीर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में। हमारी ये नंदनी माँ लिखते हैं कि बहुत, ये तो मेरा फेवरेट गाना है, हाँ मुझे पता है। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि हिट पर हिट, और हिट लिस्ट में ये भी मेरा गाना बहुत ही प्यारा है जी, मुझे पता है। और अच्छा ओके, और अमीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। एम डी नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है। और जाकिर खान जी लिखते हैं

बिल्कुल आपके दिल पे हम अपना नाम लिख जाएंगे, बिल्कुल लिख जाएंगे, और अशोक पाल जी लिख जाएंगे ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी बिल्कुल। मीना जी लिखते हैं वाह कि इतना प्यारा गाना के लिए थैंक यू। पूजा भास्कर जी और कुंता जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच पूजा भास्कर जी। और हमारी नंदनी माँ लिखते हैं कि ये तो बहुत प्यारा गाना है, मेरा फेवरेट गाना है। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी के पसंद, मुझे बहुत ही पसंद है ये। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो साहिब हुसैन जी, मैं आपका गाना प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए मेरे महबूब की आमद होगी, इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक नंदनलाल जी, लिखते हैं नमस्ते अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत देर कर दिए हुजूर आते आते। और नाहिद जी लिखते हैं कि तो ब्यूटीफुल चॉइस है, मेरे महबूब को अहमत होगी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मेरे महबूब को अहमत होगी, ऑसम डिमांड, मजा आ गया सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि इस डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, किशोर कुमार की आवाज़ में। और नाजिन जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग जी, बिल्कुल। और अशोक पाल लिखते हैं कि सरदार पसंद है जी। इसी बात अगला जो डिमांड है मेरे पास, मैं सुनवाने वाला हूँ हमारे राधा कृष्ण गोप जी की। एंजॉय कीजिए राधा कृष्ण गोप जी।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी।

ओके okay, मेरे पास डिमांड आए हुए हैं बहुत सारे, सॉरी फीडबैक भी आए हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं ओल्ड इज गोल्ड। अमर सर जी आज का प्रोग्राम शानदार लगा, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का एक से बढ़कर एक गाने भेजने के लिए। और एस खानन जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मेरे महबूब की आमद होगी जी। अच्छा आप सुन रहे हैं मुझे लगे, अच्छा उस दिन मैंने आपका गाना प्ले किया था, पता नहीं आपने सुना था कि नहीं सुना था, वो फीमेल वर्जन में था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपका गाना प्ले किया था। ओके वो यानी कि मेल वर्जन में था, आशिकी का था, मैंने फीमेल वर्जन में आपके लिए प्ले किया था। अकुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड प्रमोद जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आया है, और अशोक पाल जी लिखते हैं कि अमेजिंग पसंद है, और अजय भगत जी लिखते हैं कि मेरा संग प्ले हो गया। अरे आपका बाकी है क्या, मुझे तो नहीं पता है कौन सा गाना था आपका, हाँ बाकी है आपका, ओ माई गॉड। नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है बिल्कुल, राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमन जी मेरा गाना बजाने के लिए। और ओके और यहाँ पे ओके और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गजानन जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ किन का, देखता हूँ मैं वैसे तो आज मैं किन किन दोस्तों का गाना प्ले करूँ, वैसे ये डिमांड किन की है मैं जरा सा देखता हूँ, वैसे मैं बाद में इनका नाम लूंगा, पहले गाना प्ले करता हूँ। ओके

ओ माय गॉड, ये तो यानी कि 90s का गाना निकला। कोई बात नहीं, हम अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ हमारे इशाक हुसैन जी का, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। एंजॉय कीजिए भाई इशाक।

0: खुशबू।
1: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। नाजिम जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग बिल्कुल, और यहाँ पे दत्ता जी लिखते हैं कि शाह हुसैन जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं कि इसहाक हुसैन जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच इसहाक हुसैन जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया। और फिल्म यानी काला पत्थर का आरिफ सिंधी जी जुड़े हैं, बारिक मसाला बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और बहुत देर करते हुए आते आते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाओ ऑसम डिमांड है बिल्कुल। और निकला जी क्या कहते हैं, डेनमार्क से जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका।
2: वेरी मच मिस्टर अजय अमन,
1: अच्छा
2: एंड थैंक यू अजय वंस अगेन। Now I can log in. Thank you so very much.
1: Welcome, Ji.
2: So kind of you people. Thanks a lot again.
1: Welcome, Nicholas Ji, Denmark से, and नहीं जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, बाहों में तेरे मस्ती के घेरे। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस यानी कि डिमांड के लिए। मुबारक हुसैन जी लिखते हैं, अमन जी सारे रेडियो दोस्त के गाने एक से बढ़कर एक और प्रोग्राम लाजवाब, सभी को थैंक यू सो मच और सभी को धन्यवाद। अजय भगत जी लिखते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके गाना में प्ले कर, आपका सैड सॉन्ग था ना इसीलिए रोते रोते हंसना सीखो, कोशिश करता हूँ। मीना जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ये अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1979 का ये पैदान नंबर 27 पर आया था। अच्छा आपको सब याद है, सब लिख कर रखते हैं ऐसा लगता है मुझे। वैसे अगला जो डिमांड है मैं किन का प्ले कर दूं जल्दी से, लगता है बहुत से दोस्तों को छूटने वाला है। अच्छा चलिए फिलहाल भाई यानी दत्ताक्रम जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और समय कम है, इसीलिए भाई दत्तकरण जी गाना प्ले करने वाला नहीं था, लेकिन आपका गाना प्ले कर दिया हूँ। अगला जो डिमांड है हमारे MD फैज आलम जी का, जरा इनका भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।

0: ओके फैज जी,
1: अस्सलामु अलैकुम भाईजान। तो आज प्रोग्राम चल रहा है ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड इज गोल्ड में एक खूबसूरत नगमा है फिल्म दोस्ताना का, बहुत खूबसूरत लड़की। तो इस गाने में शामिल हैं सबसे पहले आप और आपकी दिल की धड़कन सुंदरता की मूरत जी, और हमारे साथ यहां सुन रहे हैं रवि कुमार और डॉक्टर पीके हीरा जी, और साथ में हैं गौरव कुमार, सौरभ कुमार। तो सभी और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी सम्मानित साथीगण भी हैं, तो सभी के लिए सुनवा दीजिए ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत खूब।

बिल्कुल भाई फैसला करते रहिए, लेकिन फिलहाल मैं जो अगला डिमांड प्ले करने वाला हूँ आज के यानी विनर वो है सुनीता गोप जी, और उनकी पसंद मतलब मेरी पसंद और मेरी पसंद यानी सबकी पसंद। इंजॉय कीजिए इस गाने को, जो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, और ओल्ड इज गोल्ड हो और ये गाना प्ले ना हो मजा नहीं आता है कि नहीं। इंजॉय द ट्रैक, मेरी पसंद का ये नगमा, और समवन स्पेशल के लिए।

वेलकम बैक, और फीडबैक भी आया हुआ है बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। दत्ता जी लिखते हैं धन्यवाद मनसा जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और MD5 जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा भी गाना प्ले किया। और अशोक कुमार लिखते हैं कि दोस्ताना का गाना मुझे बहुत शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। और नाजिम जी लिखते हैं कि इनकी पलके झुके तो शाम ढलती है, और पलके उठे तो सवेरा होता है, और तुम्हारे हुस्न के आगे तो चांद का नूर भी फीका होता है, और तुम सुंदरता की वो मूरत हो ऐ हसीन, जिसे देख कर खुद ऊपर वाले को भी अपनी कारीगरी पर नाज होता है। अच्छा, और यहाँ पे इनकुंता बिन जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश जी, बिल्कुल। और अमीना खान जी लिखते हैं वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि आपकी पसंद भी लाजवाब है, थैंक यू सो मच। ये तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना, ये पसंद है। बहुत से ऐसे ऐसे गाने ओल्ड इज गोल्ड में भी जो मुझे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे एस खानम जी लिखते हैं कि योर चॉइस ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन जी आपका ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जाकिर जी लिखते हैं कि किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम, सुपर पसंद सुनने को मिला, मजा आ गया। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब नगमा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देते हैं। और अजय भगत जी लिखते हैं कि क्या करूं आपका ऐसा जो गाना ही है, कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड है जल्दी से मैं प्ले करूंगा। ओ माय गॉड, मुझे तो आज की आज देखते हैं जो भी होगा, क्या बोलते हैं, यानी कि हमारे टॉप लीडर बोर्ड में मैं उन्हीं को कॉल लगा लूंगा। लॉटरी नहीं निकले, एक मिनट जरा लिखना पड़ेगा, लीडर बोर्ड। ओके, अमीना खान जी फर्स्ट है, और सेकंड है हमारे MD फैज आलम जी, और थर्ड है हमारे गजानंद सलोकार जी, एंड फोर्थ है हमारे प्रमोद कुमार जी, एंड फिफ्थ नाहिद अंसारी जी, सिक्स्थ है यहाँ पे कुंता बेनी जी, और उसके बाद बिट्टू कुमार जी, मीना इब्राहिम जी, अशोक कुमार जी और एस खानम जी। तो आज के जो यानी कि टॉप है यानी फर्स्ट है अमीना खान जी, मैं आपको कॉल लगाने वाला हूँ, अपनी पसंद सोच के रखिएगा। फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करता हूँ, ये डिमांड देखना पड़ेगा मुझे, चलिए ये मैं डिमांड प्ले करता हूँ। इनका नाम है संतोष गौंड जी, और नागन सारूप है तेरा, और इनके बाद अजय भगत जी आपका गाना प्ले करूंगा। ओके, तब मैं अमीना जी को मैं कॉल लगाऊंगा। नागन सारूप है तेरा, ओके, एंजॉय कीजिए भाई इस गाने को।

0: गगन को डोर समझ रहा है?
1: हाँ।
0: नादान।
1: कोई बात नहीं,
0: मौत आई है तेरी।
1: मंजूर है, इतनी हसीन मौत।
2: अरे ये नागन डस ले तो क्या कहना।

0: सीखो।
1: और फीडबैक भी आ गया है मेरे पास, मतलब फीडबैक भी शामिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि नागान स्वरूप है तो संतोष गौंड जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: सभी सॉन्ग सुपर हिट, ओल्ड इज गोल्ड का तो प्रोग्राम ही बहुत बहुत आनंदित रहता है। अच्छा। पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ अमन सर जी, 9 बजे से जुड़ा हूँ, मजा आ जा रहा है पूरे प्रोग्राम।

0: होगा तुझको, दुनिया देखेंगी। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, दोनों भी सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक। क्या बात है, क्या बात है अमन सर जी, इस सॉन्ग को तो सप्ताह का सोमवार के दिन सप्ताह का नंबर वन सॉन्ग कहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हर सप्ताह बज जाता है तो बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है इस सॉन्ग को। किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम तकदीर की सौगात हो तुम।
1: बिल्कुल, ये गाना तो है ही इतना प्यारा। और मीना जी लेते हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और मीना कुमारी जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखने के बहुत ही प्यारा गाना है। और जाकिर जी लिखते हैं शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं वाओ बहुत ही प्यारा गाना, ओके जी। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि ये बगावत का भी शानदार गाना, धर्मवीर का भी ये भी गाना अच्छा लगा। किसका? अच्छा धर्मेंद्र पर है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर है। अजय बाबा जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि अच्छा आरिफ सिंधी जी का नहीं आएगा लेकिन अनिशा सिंधी जी का आ जाएगा जाते जाते, आखिरी गाना होगा उन्हीं का। आत्माराम जी लिखते हैं कि अमर सर जी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अच्छा लगा गाना सुनकर, मजा आ गया सुन के। और अशोक कुमार लिखते हैं कि अंधाकरण का गाना भी सुपर हिट लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पे कॉल लगाते हैं अमीना खान जी को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत बधाई भी हो। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हैं अमीना खान जी?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बोले तो जक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास, मजे में चकाचक एंड ले भारी
2: भारी। जी जी, अच्छा मैं अरबी में, अरबिक में पूछूं आपसे?
1: हाँ अरबिक में अगर इन्हें पूछेगा अरबी आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा।
2: कैफ हालु?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: राइट राइट, आई एम फाइन थैंक यू।
1: ओके बताइए
2: जी।
1: तो आज मैं, हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए।
2: मैं दो सॉन्ग सुनूंगी, दो सॉन्ग है मेरे, तो उसमें से जो पसंद है वो आप प्ले कर देना।
1: अच्छा, ओके ओके ओके ठीक है, आप बताइए
2: जी। एक हाल कैसा है जनाब का, और क्या मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग छुड़ाए, दोनों में से कोई भी एक।
1: मिलो ना तुम तो हम घबराए, ये तो बहुत अच्छा है।
2: हाँ जी जी जी, जी
1: ये अच्छा है। और हाल कैसा है जनाब,
2: जनाब का
1: क्या ख्याल है आपका,
2: माहौल के हिसाब से?
1: हाँ तो अभी तो फिलहाल मिलो न तुम तो सुनते हैं, एंजॉय कीजिए
2: जी। थैंक यू, शुक्रिया।

वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, यानी कि शिल्पा बेन का गाना जी मैं सुनवा रहा हूँ। और शिल्पा बेन जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

और आखिरी गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ, यानी कि अनिशा सिंधी जी का और बहुत से दोस्तों का गाने को मैं अपने यानी प्ले लिस्ट में लाके जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज वहाँ से सुनते रहेंगे और गुस्सा ना होंगे बिल्कुल। ओके, तो मुझे तुम याद करना और याद आना तुम, सच में ये गाना तो सुनाना पड़ेगा।

ओके तो बिल्कुल मैं कल लौट के आऊंगा फिर, क्योंकि मैं जाता हूँ आने के लिए, तो मैं कल आऊंगा शाम 6:30 और स्टार 90 एंड न्यू स्पेशल में। और तब तक के लिए आप सुनते रहे रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, और सभी दोस्तों के गाने को मैं प्लेलिस्ट में ला के जा रहा हूँ, आप लोग वहां से सुनते रहेंगे। ओके बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

यहाँ आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।